0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता

0: करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6:05 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ।
2: ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगी। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 100.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਏ ਆਈ ਆਰ ਐਪ 'ਤੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ 7:05 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਨੁਕਤੇ।
3: ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਰ ਗਲਣ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਝਾੜ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਇੱਕ ਉੱਲੀ ਜਿਬਰੈਲਾ ਫੂਜ਼ੀਕੋਰਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਟੌਕਸਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਅਤੇ ਪੂਸ਼ਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509, ਜੋ ਇਹ ਰੋਗ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਗ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਬੀਜ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਉੱਲੀ ਦੇ ਕਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਗ ਪਨੀਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਲੀ ਦੇ ਕਣ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਸਮੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।

दिने 2 बजे फौजी वीरां दा प्रोग्राम सरफरोश। दो तेरियां दो मेरियां बाद दोपहर 2:30 बजे प्रसारित होने वाले इस प्रोग्राम दे विच अज श्रोतियां दे नाल खुल्लियां गल्लां होणगियां। गल्लां चों गल्ल, इस प्रोग्राम दा वेला शाम 5:02 दा। अज शामी 5:30 बजे किसान दोस्तों नूं किसान वाणी पुआधी है सुनवाया जाएगा। शामी 6:05 ते प्रोग्रामां दी जानकारी। नौजवान स्रोतियां दीआं फरमाइशां दे उत्ते पंजाबी गीत सुनवाए जाणगे विबग्योर प्रोग्राम दे विच शाम 6:30 बजे। भगती संगीत का प्रोग्राम तुसीं सरवण करदे हो साडे केंद्र तों बंदगी। वेला शाम 7:02 का। श्रोतियां दस दिए कि शाम 7:30 बजे तो ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 अधीन लंडन इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम विच इंग्लैंड ते आस्ट्रेलिया दीआं टीमां विचकार खेडे जाण वाले फाइनल मैच की ऑफ ट्यूब कमेंटरी का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो आकाशवाणी पटियाला के प्रोग्राम तुसी साडी ऐप के जरिए सुन सकते हो न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम राही।

0: वाहन चालक ध्यान रखन।
1: वाहन चलाउंदियां आरसी, बीमा अते प्रदूषण सर्टिफिकेट अपने कोल रखो।
0: ड्राइवर अपना लाइसेंस हर वेले अपने कोल रखे।
2: कार तो काम करो, वादू तनखा, बस एक क्लिक दे।
3: वाजी वाह।
4: फसी।
5: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। आरबीआई कहंदा है
6: जानकार बनो, सुचेत रहो।

0: गौरवमय 90 साल।
1: QR कोड नु स्कैन करो, 5000 दा कैशबैक पाओ। वाह, फायदा ही फायदा।
2: फसिया। UPI पिन दाखिल करो, सिर्फ पैसे भेजन लई।
3: RBI कहंदा है,
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।
5: सेफ पंजाब व्हाट्सएप चैटबोट राही 43,520 शिकायतां पुज्जियां ने। पंजाब पुलिस सूबे चो नशियां दे खात्मे लई विड्डी युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत वड्डे पद्धर ते कारवाई कर रही है। इस तहत नशा तस्करां दी सूह हासिल करन लई तैयार कीते सेफ पंजाब व्हाट्सएप चैटबोट राही आम लोग वड्डी गिणती विच पुलिस नूं जानकारी दे रहे ने। इस सूचना दे आधार ते पुलिस वल्लों तस्करां दी पैड़ नप्पी जा रही है। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 97791-00200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, 97791-00200।

0: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਾਲਵਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें

0: को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
0: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है, साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान, और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
5: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
2: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा.
5: Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu also said that the launch of the Viksit Udaan scheme will mark the next chapter of India's regional connectivity journey. Mr. Naidu said the scheme, launched by Prime Minister with an outlay of over 28,840 crore rupees, will facilitate the development of over 100 new aerodromes and 200 helipads, bringing the dream of affordable air travel closer to millions and connecting the aspirations of a rising India.
7: It is the vision of Prime Minister Narendra Modi that wherever there is expansion of civil aviation, it should benefit not just passengers but also the economy of the entire city, businesses, students and every sector as well as citizens. We can see the effect across the country today.
5: Later in the day, Prime Minister Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test, or OSAT, plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: Bharat jo thaan leta hai, wo karke dikhata hai. 5 saal pehle Bharat ne sankalp liya tha ki desh ko semiconductor hub banayenge. हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है.
5: Mr. Modi also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी. आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं. आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा. मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे.
5: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1,875 rupees per quintal to 2,125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts. A report.
4: The procurement of onions through the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited and National Cooperative Consumers Federation of India Limited for the government's price stabilization buffer is in progress. As per the second advance estimates of the Department of Agriculture and Farmers Welfare for 2025-26, onion production is estimated at over 307 lakh metric tons. The ministry said that the current stock levels in Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat are adequate and at present there are no indication of any shortage of stored onions. The All India average retail price is 31 rupees per kilogram. Onion exports are also normal, with about 1,50,000 metric tons exported during June this year. With Dipendra Kumar, Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
5: The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that ethanol is not a new concept and has been in use for over a century. Addressing a gathering in Rajasthan, Mr. Puri said that the government welcomes constructive criticism of the government's biofuel blending program and assured that the government will incorporate suggestions into its work and make necessary corrections. Mr. Puri also said that the idea of ethanol blending in India was first initiated during the previous Congress-led government.
3: For those of you who have worked with me and know me, criticism ko main welcome karta hu. Aapko kuch lage ki hum jo kaam kar rahe hain agar usme koi kami hai to aap bataiye, hum aapki baat sunenge, aapke sujhav jo hain unko hum apne kaam mein incorporate karenge and we will make the correction.
5: Moreover, industry experts have also said that ethanol blending program has not been introduced overnight but has been implemented through a measured, step-by-step and scientifically driven process. Addressing a press conference in New Delhi, former chairman and managing director of Engineers India Limited, Vartika Shukla, said that ethanol blending program was placed in the public domain for structured discussions and stakeholder consultations in 2018.
8: The ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions.
5: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. As part of our series, Prakriti Ki Baat Akashvani Ke Saath, we bring you a conversation with Mr. Devinder Sura, who has been working towards tree plantation and environmental conservation. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold this morning at 10:30 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Australian Prime Minister Anthony Albanese has hailed India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit to Australia from 8th to 10th of this month. In a statement, Australian Prime Minister's office said, as world's fourth largest and fastest growing economy, India is a critical economic partner for Australia. Mr. Albanese said, Australia's relationship is underpinned by comprehensive strategic partnership and supported by deep economic and cultural connections. He said India-Australia cooperation on trade, defence, security and technology is delivering benefits for both the countries. The India Meteorological Department, IMD, has said that heavy monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. IMD said a well-marked low-pressure area over the northwest Bay of Bengal is expected to keep the monsoon active across central India for the next 4 to 5 days. It also said the southwest monsoon is likely to advance into the remaining parts of Haryana, Punjab and Rajasthan, along with parts of Gujarat and the North Arabian Sea over the next 4 days. A severe heat wave is sweeping across the eastern United States, placing significant pressure on power grids, disrupting preparations for FIFA World Cup matches. We have a report.
9: With the heat index expected to exceed 46 degrees Celsius, New York City, the most populous city in the United States, is bracing for unprecedented temperatures, while heat warnings have expanded across the northeastern states and the central Atlantic coast. New York City authorities have introduced a series of measures to address the extreme heat, including converting hundreds of public buildings into cooling centers, deploying volunteers to check on vulnerable groups, and extending the opening hours of the public swimming pools across the city. The U.S. National Weather Service said that due to high humidity levels, the heat index could reach 41 degrees Celsius in Boston, 44 degrees Celsius in Philadelphia, and 45 degrees Celsius in Washington. The agency also forecast record-breaking temperatures during Independence Day celebrations, with the potential for consecutively daily records to be broken, in addition to monthly records and possibly the highest temperatures ever recorded. Jigyasa Pandey, Akashvani News, Delhi.
5: On to sports now. In football, France and Morocco stormed into the quarterfinals of FIFA World Cup. We have a report.
1: Oh,
10: France booked their place in the quarterfinals with a hard-fought 1-0 victory over Paraguay in the round of 16 at Philadelphia. Captain Kylian Mbappe scored the only goal of the match from the penalty spot in the 70th minute. France will now face Morocco in the quarterfinals. Moreover, Morocco also stormed into the quarterfinals with a commanding 3-0 victory over co-host Canada in Texas. Soufiane Rahimi sealed the win with a stoppage-time goal as the African champions booked their place in the last eight in emphatic fashion. Earlier, defending champions Argentina also progressed to the round of 16 after defeating Cabo Verde 3-2 following extra time in a thrilling round of 32 encounter. Argentina will next face Egypt. Meanwhile, in the final round of 32 match played yesterday at Kansas City Stadium, Colombia edged past Ghana 1-0 to secure a place in the round of 16. They will now face Switzerland for a spot in the quarterfinals. With Vikas, Chirag Jha from Sports Desk.
5: In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester yesterday. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
11: Thank you, Saira. Papers have widely noticed Prime Minister Modi's visit to Gujarat and Rajasthan, where he inaugurated path-breaking developmental projects, while the new EV policy in the state capital has also gained traction. Hindustan Times writes, India overcame crisis on refining prowess. We'll keep building, says Prime Minister. The Hindu notes, Modi inaugurates semiconductor facility in Gujarat. The Sunday Express headlines, new EV policy empowers middle class. Delhi transforming has chosen a new direction for cleaner, more modern future. Sunday Times informs, City Court cites Supreme Court order, denies bail to Sharjeel Umar. Telegram told to act against piracy or face action, writes the Economic Times. And finally, indeed, love knows no bounds. The Sunday Express writes about one Zeeshan Ahmed who crossed the LOC to meet his love, Iram Majid. The two had fallen in love over Snapchat. A month after he crossed LOC for love, 22-year-old POK man sent back. And with that, it's back to you, Saira.
5: Thanks, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूजी ते तीजी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को हुलारा देने लई खेतरी हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान के अगले पड़ाव की शुरुआत की है। सरकार ने किसानों की आमदन वधाने ते कीमतों ते कंट्रोल लई प्याज की खरीद कीमत में 13% का वाधा करके 2,135 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्ट्रेलिया दौरे तो पहले आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस ने प्रमुख आर्थिक भाईवाल वजों भारत की शलाघा की है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक देश के बहुते हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी। पंजाब कई थावां ते भारी बारिश लई 8 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी। फ्रांस ते मोरक्को दीआं टीमां फीफा फुटबाल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल च पहुंच गईआं ने। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूजी ते तीजी श्रेणी के शहरों के नाल नाल दूर दराडे इलाकों में हवाई यात्रा को हुलारा देने लई खेतरी हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान के अगले पड़ाव की शुरुआत की है। कल श्री मोदी ने राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे से एक नवी टर्मिनल इमारत का उद्घाटन भी किया, जिस नाल भारत सिविल हवाबाजी बुनियादी ढांचे और खेतरी संपर्क को मजबूती मिलेगी।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: सिविल हवाबाजी मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना की शुरुआत भारत के खेतरी संपर्क विच अगले अध्याय की शुरुआत है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए तो वध दे बजट नाल शुरू की गई यह योजना टीयर टू ते टीयर थ्री शहरों विच हवाई संपर्क नूं मजबूत करेगी। उन्होंने अगे कहा कि यह पहल 100 तो वध नवे हवाई अड्डिया ते 200 हैलीपैडा के विकास विच मदद करेगी, जिस नाल लखां लोगों लई किफायती हवाई सफर का सुपना साकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सानंद में अत्याधुनिक सीजी सैमी आउटसोर्स्ड सैमी कंडक्टर असैम्बली और टैसटिंग सहूलत का उद्घाटन किया। इस समागम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद सन। इस मौके पर एक बड़े इकट्ठ को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत की विशाल इलैक्ट्रॉनिक्स क्रांति में अगला कदम है, जिसने देश को पहले ही दुनिया के दूजे सब तो वड्डे मोबाइल फोन निर्माता वजों स्थापित किया है। उन्होंने अगे कहा कि भारत महत्वपूर्ण और उच्च टैक्नोलॉजी खनिजों में आत्म निर्भरता हासिल करने वाल भी तेजी नाल काम कर रहा है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि इस दे नाल पूरी घरेलू सप्लाई लड़ी नूं मजबूत करन ते ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस नूं विकसित भारत दृष्टिकोण और मेक इन इंडिया पहलकदमी का अगले पड़ा दसिया। सरकार ने कीमत स्थिरता लई प्याज की खरीद कीमत में 13% का वाधा किया है। हुण प्याज की खरीद कीमत 1,875 रुपए प्रति क्विंटल तो वध के 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। खपतकार मामले खुराक और जनतक वंड मंत्रालय ने कहा कि सोधी हुई खरीद कीमत नाल प्याज उगाउण वाले किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और बफर खरीद यत्नां नूं भी हुलारा मिलेगा। सरकार दे कीमत स्थिरता भंडार लई नैफड अते एनसीसीएफ राही प्याज की खरीद की जा रही है। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग वालों साल 2025-26 लई दूजे अगाऊं अनुमान अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन तो वध होण दा अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश अते गुजरात विच काफी स्टॉक है अते इस समय प्याज की सप्लाई च कोई कमी नहीं है। प्याज की बरामद भी आम वांग बनी हुई है। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथानोल कोई नवा संकल्प नहीं है अते यह एक सदी तो वध समय तो वरत्या जा रहा है। राजस्थान में एक इकट्ठ नूं संबोधन करदे श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने बायोफ्यूल मिशन प्रोग्राम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने भरोसा दिता है कि सरकार सुझावों के आधार से जरूरी सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथानोल मिश्रण का विचार सब तो पहला पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल दौरान शुरू होया सी। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्सेंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। तो यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्ट्रेलिया दौरे तो पहला भारत में एक प्रमुख आर्थिक भाईवाल दसिया है। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਐਲਬਲੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 2028-29 ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਸਲਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 3ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ ਏ ਤਾਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਮੰਦਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੌਜ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ CRPF ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਲਈ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਛੁਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में यारियां फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे बैंगिस्तान फिल्म का गाना। लीजिए सुनिए लव ब्रेकअप्स जिंदगी, इस फिल्म का गाना बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और तर्ज बनाई है सलीम सुलेमान ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है देवी श्री प्रसाद ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सूरज पे मंगल भारी इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं मोहसिन शेख, ज्योतिका टांगरी मेलोडी और ऐश्वर्या भंडारी की। दानिश साबरी ने लिखा इसे और संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

तो दोस्तों, आज के चित्रलोक प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से आवाजें हैं विशाल ददलानी, हंसिका अय्यर की, और इस गाने का तमिल रैप का अंश गाया है श्रीचरण कस्तूरी रंगन ने। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य और निरंजन अयंगर के, संगीत विशाल शेखर का। तो मैं कहता हूं आपसे, लेट्स गो ना ऑन अ डांस फ्लोर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराए, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: दामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

फिल्म पुकार के बाद साल 2001 में वो लेकर आए महिलाओं से जुड़े विषय पर एक बड़ी ही प्रखर फिल्म लज्जा।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष भूमिका में थी।

लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

के प्रधानकारी आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: सुकून का एक कोना।
1: दोस्तों हम तक तुसीं विविध भारती प्रसारण सेवा के प्रोग्राम सुन रहे थे साडे मुंबई केंद्र तों।

0: FM बैंड 100.2 MHz सैटेलाइट स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते असी आकाशवाणी दे पटियाला केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 10 बजे ने इस वक्त दियां न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूजी ते तीजी श्रेणी दे शहरां विच हवाई यात्रा नूं हुलारा देण लई खेतरी हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान दे अगले पड़ाव दी शुरुआत कीती है। सरकार ने किसानों की आमदन वधाउण ते कीमतों ते कंट्रोल लई प्याज की खरीद कीमत विच 13% का वाधा करके 2,125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्ट्रेलिया दौरे के पहला आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक भाईवाल वजों भारत की शलाघा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो 10 जुलाई तक कतर बहरीन कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। पंजाब सरकार ने शुद्ध दुध तंदुरुस्त पंजाब मुहिम तहत दुध विच मिलावटखोरी नाल नजिठण अते दुध दी गुणवत्ता बारे जागरूकता पैदा करन लई एक समर्पित टोल फ्री हैल्पलाइन नंबर 1800 180 2202 स्थापित कीता है। पंजाब पुलिस ने साइबर अपराध खिलाफ मुहिम कीती होर तेज़ एक साल विच 729 गिरफ्तारियां। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक देश के बहुते हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी। पंजाब विच भी कई थावां ते 8 जुलाई तक भारी बारिश लई येलो अलर्ट जारी किया गया। फ्रांस ते मोरक्को दीआं टीमां फीफा फुटबाल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गई ने। अते दूजे T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच विच इंग्लैंड ने भारत नूं 4 विकटां नाल हरा दिता है। साडे अगले प्रोग्राम लई कुछ पल इंतजार करो।
1: सड़क ते वाहन चलाउंदिआं जां पैदल चलण समें आवाजाई दे नियमां दी पालना करो
2: अते देश दे चंगे नागरिक बनो।
1: आप भी बचो, दूजिआं नूं भी बचाओ।
3: सड़क सुरक्षा सब दी सुरक्षा। आप भी बचो, दूजिआं नूं भी बचाओ। हसदे हसदे घर तों जाओ, हसदे हसदे घर नूं आओ।
0: खजाना प्रोग्राम च मैं वरिंदर सिंह कालों नवे हिंदी फिल्मी गीतां दी इस गुलजार च हर कोई झूम उठता है अपने सब गम भुला के।

ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਗੰਧ ਮਹਿਕ ਪੁਸ਼ਪ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ।

0: हेलो,
1: सत श्री अकाल मैडम जी।
0: सत श्री अकाल जी। ना दसो कौन ते कित्थों गल कर रहे हो
1: सुरिंदरपाल सिंह, सुरिंदरपाल सिंह बोल रहे जी, कड़हाली साहब तो जी।
0: जी। सुरिंदरपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम हैलो फरमाइश च
1: धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत।
0: जी। फरमाइश पूछने तो पहला असीं ये भी पूछ लिए, तुसीं करदे की हो
1: मैडम जी मैं टेलर मास्टर है, सिलाई का काम करता जी।
0: जी? सिलाई दा काम करदे हो, फिर नाल नाल रेडियो सुनदे रहने हो
1: हाँ जी हाँ, चलता रहता सवेर तो शामी तक, जो
0: जी?
1: तक
0: जी
1: बैठे रहने।
0: चलो, बहुत चंगी गल है। नाल नाल फिर तुसी अपनी फरमाइश भी जड़ी पूरी करा रहे हो, है
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी?
1: जी
0: जी,
1: मैडम जी,
0: ते फिर केड़ा गीत सुनोगे अज?
1: बिंद रखिए साथ मैडम जी, कोई भी।
0: ठीक है जी, सुरजीत बिंद रखिए दा आवाज दे विच गाना सुना रहे हैं, थोड़े सेट ते आ रहे हैं। कॉल करने लई शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद मैडम जी।

0: दीदी देखो,
1: हैप्पी सिल्वर बर्थडे।
0: दिखा, वाह मेरा फेवरेट कलर।
1: हमेशा शॉपिंग
0: जानदा हाँ माँ, खर्चे करंदी यही उम्र है, राइट?
2: सेविंग करंदी भी यही उम्र है।
3: मैंने पता है बापू, सेव करो, सही थां ते निवेश करो, मूल रकम ते ब्याज मिलेगा, जिसनु दोबारा निवेश करन ते ब्याज मिलता रहेगा।
4: मैंने पता है ना।
3: आरबीआई कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय तौर ते स्मार्ट।
6: हेलो
7: हेलो भैन जी, तुहानू ते सारे सुनन वाले श्रोतियां नू मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल
6: जी। तुहानू भी प्यार भरी सत श्री अकाल है जी। अपना नाम दस जी।
7: मैं वन वे ट्रैफिक रोड नेड़े बस्तर दा मानसा तो जगदीश राय गर्ग बोल रहे
6: जी। जगदीश जी, ते फिर अज प्रोग्राम च केड़ा गीत सुनना चाहोगे?
7: भैन जी, मामा सदीक ते रणजीत कौर जी दा गाया गीत
6: जी,
7: फेर नहीं मखौल करदा
6: जी। जी
7: सुना देना
6: जी। जी थोड़ी पसंद ते सुनवा रहे हैं ये गीत। कॉल करने लई बहुत बहुत शुक्रिया जी।
7: शुक्रिया भैन जी, धन्यवाद।

0: खिलाए।
1: अरे मारे क्या गवांडी, मैनू कोई ना छुड़ावे।
2: हेलो
3: हेलो, सत श्री अकाल अंदिता मैडमा जी।
2: सत श्री अकाल जी।
3: तन्ना सिंह खरौड़ बोलदा जी सिवणे तो।
2: जी तन्ना सिंह जी, ते बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम च।
3: शुक्रिया जी, थोड़ी थोनू मेरी उम्र भी लग जाए मैं तो कहना रब करके।
2: जी जी जी, ते केड़ा गीत सुनोगे अज प्रोग्राम च?
3: अमृता बिरक दा सुना दो जी, दिल दी बही ते घुग्गी मार मुंडिया।
2: ठीक है जी, सुनवा रहे तुहाडी फरमाइश ते गीत। धन्नवाद जी,
3: शुक्रिया।
4: What's his name?

जी प्रोग्राम चल रहा जी। हेलो फरमाइश, ते श्रोतिया ने बेनती है कि तुसी साढ़े दूजे नंबर ते फोन करके अपनी फरमाइश साढ़े नाल सांझी कर सकते हो। साढ़ा नंबर है जी 0175-2282-394। जिनी देर तक कोई श्रोते साढ़े नाल अपनी फरमाइश सांझी करते हैं, उन्नी देर तक सुन लैने गुरदास मान की आवाज़ च ये गीत।

0: हेलो हेलो,
1: सत श्रीकाल जी। खड़कते
0: सत श्री अकाल जी।
1: मट्टू पिंड वालियां तहसील धूरी जिला संगरूर जी।
0: जी खड़क सिंह जी, ते टाइम प्रोग्राम च थोड़ा जिहा रह गया, तो दसोंगे केड़ा गीत सुनोगे अज तुसी?
1: जमले का गीत है, जोड़ी वेच के घुंगरुआ वाली हथां लिया दे पहुंचिया।
0: ठीक है जी, तुहाडी फरमाइश ते सुना रहे हैं ये गीत, कॉल करने लई शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद जी।

0: हेलो
1: मैम, सत श्रीकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। नाम दसो अपना।
1: मैम, मैं पिंड चारा जिला फतेहगढ़ साहब तो गगन बोलता जी, थोड़ा पक्का पुराना स्रोता रेडियो का।
0: जी, गगन जी दसो केड़ा गीत सुनोगे? प्रोग्राम टाइम थोड़ा ही रह गया।
1: रविंद्र गरेवाल का गीत ला दो जी। ठीक
0: ठीक है जी, थोड़ी सी फरमाइश तो सुना रहे हैं। गीत कॉल करने लिए शुक्रिया जी।
1: है जी।
0: जी तो इसे गीत के नाल ही अज का प्रोग्राम हैलो फरमाइश खत्म करने की आनंदिता शर्मा ने दियो इजाजत।

खेड़ा तू, मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती, अरोड़ा। सुनेहा भेज देने प्रोग्राम च सुखविंदर सिंह, रुपिंदर सिंह, भोला सिंह, अमरजीत सिंह, दर्शन सिंह, सुरेंद्र संधू, नीरज ते जशन, पिंड बनवाड़ी, राजपुरा टाउन तो। फरमाइश तुहाडी शामिल कर रहे हैं, उत्तराखंड तो लिखण वाले ने। रियासत हुसैन, नाजमा, रियाज, रिफाकत, रिहान, परवीन ते माहिरा। अमरीक सिंह लिखते ने इस प्रोग्राम के लिए जलान, जिला संगरूर तो। इन्हां साथी मनप्रीत सिंह, बलजिंदर सिंह, परमजीत पुरवा। मैसेज तुहाडा पहुंचे है, पिंड ते डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी, जिला जींद हरियाणा तो। जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर। सुनते हैं तुहाडा पसंद किया प्रोग्राम का अगला गीत।

0: नमस्ते, मेरा नाम मनन है। मैं शिशुनिकेतन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, प्यासा कौआ। एक जंगल में प्यासा कौआ पानी की तलाश में भटक रहा था। कहीं दूर जाने पर उसको कुछ नहीं मिला, पर शहर में जाके उसको एक घड़ा मिला। घड़े के पास पहुंचा पर उसको दिखा कि घड़े में पानी बहुत कम था। उसके आसपास बहुत सारे पत्थर पड़े थे। उसने दिमाग लगाया और उसने सारे पत्थर एक एक करके घड़े में डाल दिए, जिससे पानी ऊपर आ गया। उससे उसने अपनी प्यास बुझाई और अपने घर को गया।
1: आज जैसी थन

ना को बैरी नहीं बेगाना, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। सत श्री अकाल, मेरा नाम लीजा है, मैं 8वीं ए जमात दी विद्यार्थन हाँ। सब धर्मां विच मनुखता दी सेवा दा संदेश दिता गया है। परमात्मा दी भगती तो बाद जे किसे होर उत्तम कर्म दी गल कीती जावे तां ओह मानवता दी सेवा है। इस सेवा भावना नूं प्रफुल्लित करन लई भाई कन्हैया जी दा चरित्र एक चानण मुनारे वांग सामने आउंदा है। भाई कन्हैया जी दा जन्म पिंड सोदरा नेड़े वजीराबाद जिला सियालकोट पाकिस्तान विखे सन 1648 ईस्वी विच होया। उन्हां दे पिता जी एक अमीर वपारी सन। भाई कन्हैया जी बचपन तो ही लोकां दी सेवा करिया करदे सन। उन्हां कोल जो भी हुंदा ओह लोड़वंदां नूं दे दिंदे। आप पहली बारी गुरु तेग बहादुर जी दे दर्शनां लई आनंदपुर साहिब आए। गुरु जी दे दर्शन करन पिछों आप जी नूं बहुत आनंद प्राप्त होया। उस आनंद नूं हर समय मानण लई आप उत्थे ही रह पए। आप जी दे गुरु दे लंगर विच पाणी दी सेवा संभाल दित्ती गई। पंगाणी दा युद्ध शुरू होण तो पहलां गुरु गोबिंद राय जी ने आप नूं जंग दे मैदान विच लोड़वंदां नूं पाणी पिलाउण दी सेवा बख्शी। 15 अप्रैल 1687 ईस्वी नूं 400 पठाणा नूं मिला के सिखां उपर हमला कर दित्ता गया। रणभूमि विच जिस नूं प्यास लगदी ओह भाई कन्हैया जी पास पुज जांदा, आप उस नूं पाणी पिला दिंदे। हिंदू मुसलमान सिख अते पठान आप पासों पाणी पी के तरो ताजा हो के फिर युद्ध विच जुट जांदे। सिखां ने जदों भाई कन्हैया जी नूं पठाणा मुसलमाना अते पहाड़ी राज्यां दे सिपाहियां नूं पाणी पिलाउंदे तकियां तां ओह सहार ना सके। सिखां ने सोचिया भाई कन्हैया जी जे दुश्मन सिपाहियां नूं पाणी पिलाउण लगे तां ओह जरूर प्यास नाल दम तोड़ देन। सिखां ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कोल शिकायत कीती कि भाई कन्हैया जी नूं दुश्मन सिपाहियां कोल पाणी पिलाउण तों रोकिया जावे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुछण ते भाई कन्हैया जी ने कहा, मैनूं नहीं पता कौन अपना कौन पराया, मैनूं तां हर तड़प दे इंसान विच तेरा ही रूप नजरी आया। इस ते गुरु जी ने खुश होके मलम दी डब्बी ते पट्टी भी नाल दे दित्ती ते हुक्म कीता कि भाई कन्हैया जी अज तो मलम पट्टी दी सेवा भी संभाल लियो अते जख्मियां नूं पाणी पिलाउण दे नाल नाल मलम पट्टी भी कर दिया करो। भाई कन्हैया जी ने उस तरह ही कीता। सिखां दा इक जत्था तैयार कीता अते आप उस दे मुखिया बन गए। इह सब तो पहली रैड क्रॉस सेवा दा आरंभ सी। सन 1704 ईस्वी विच जदों गुरु जी ने आनंदपुर साहिब छड्या तां आप फिर अपने आश्रम कवा चले गए। कवा पहुंच के आप जी ने लोकां दी बहुत सेवा कीती। 71 वर्यां दी उम्र भोगण तो बाद 1718 ईस्वी विच आप ज्योति जोत समा गए। आप जी दी निष्काम सेवा भावना कारण आप जी नूं हमेशा याद रखिया जावेगा। आप जी दे नाम कई संस्थावां अते चैरिटेबल हस्पताल खोले गए। भाई कन्हैया जी दे जीवन दे इह नियम हन, निष्काम सेवा करो, सारे बराबर

0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए ये एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ ते लाइव स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते असी आकाशवाणी दे पटियाला केंद्र तो बोल रहे हैं। स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक इस वेले ठीक दोपहर दे 12:05 हो रहे ने। पेश है भैणां दा रोजाना ते पसंदीदा प्रोग्राम नारी लोक।

जी प्रोग्राम चल रहा है जी नारी लोक, ते तुसी जुड़े हो अपनी रेडियो दोस्त आनंदिता शर्मा दे नाल। ते काफ़ी फरमाइशां साढ़े तक पहुँच चुकियां ने, ते फरमाइश सानू भेज रहे ने गिद्दड़ बाहा तो सुनीता सानिया ते काकू पटियाला तो। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने पाल कौर ते मनवीर कौर पिंड सिउणा तो। भुपिंदर कौर सैनी पिंड वड्डियां जाला तो सानू फरमाइश भेज रहे ने। मनजीत कौर ते अर्शदीप कौर वो भी पिंड सिउणा तो सानू फरमाइश भेज रहे ने। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा नारकली बाजार जगराओं तो। कनेरा मोहल्ला पटियाला तो नीलम बत्ता पलक गीतू निकी निहारिका हार्दिका ते वंशु बत्ता। आओ सुनदे हैं इन्हां सारे रली मिली फरमाइश ते सतविंदर बिट्टी दी आवाज़ च एक गीत।

नमस्कार, ए आकाशवाणी। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। केंद्रीय देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर की थी कि विकसित भारत रोजगार अते आजीविका मिशन ग्रामीण ले गारंटी वीबीजी रामजी कानून 2025 इस महीने की पहली तरीक नूं सफलता नाल लागू हो गया है। मंत्री ने अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही मिशन तहत राज्यां नूं 25,000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर अते जारी की थी। श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय देहाती रोजगार गारंटी योजना तो सफलता नाल तब्दील हो गया है। उन्हें कहा कि एमजी नरेगा नू लागू करन विच 3 साल तो बाद समय लग गया, जदों कि वीवी जी रामजी

0: तीनों देश भर में सिर्फ एक दिन विच लागू किया गया। श्री चौहान ने कहा कि इस कानून तहत विकसित भारत के दृष्टिकोण को तेज करने लिए अगले 5 साल 2.86 लाख पंचायतों 7.5 लाख करोड़ रुपए तो वध का निवेश किया जाएगा। पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा है कि पंजाब में नशे खिलाफ चल रही लड़ाई हुण लोक लहर बनती जा रही है, जिस तहत पिंडां ते शहरी खेतरां दे लोक वड्डी गिणती विच अगे आ के सेफ पंजाब वट्सएप हैल्पलाइन ते नशा तस्करां ते सप्लायरां बारे गुप्त रूप विच जानकारी सांझी कर रहे ने। जिक्रयोग है कि सेफ पंजाब हेल्पलाइन 97-791-0000 चल रही युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम का हिस्सा है। नंबर एक बार फिर सुन लो 97-791-0000। उन्होंने भी कहा कि लोगों की वधदी हिस्सेदारी नाल ना सिर्फ पुलिस को नशा तस्कर विरुद्ध सख्त कार्रवाई करन विच मदद मिल रही है, सगों इस तो यह भी स्पष्ट होंदा है कि लोगों का सरकार ते भरोसा वध्या है। सूबे विच चल रही फैसला कुन मुहिम गैंगस्टरां ते वार दे 165वें दिन पंजाब पुलिस ने सूबे भर विच गैंगस्टरां दे साथियां ते पछाणे गए अते 829 टिकाणियां ते छापेमारी कीती है। जिक्रयोग है कि गैंगस्टरां ते वार पंजाब नूं गैंगस्टर मुक्त सूबा बनाउण लई फैसला कुंजांगे, जो 20 जनवरी 2026 नूं DGP पंजाब गौरव यादव वल्लों शुरू की गई सी। गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स पंजाब के तालमेल नाल सारे जिलों दीआं पुलिस टीमां सूबे भर विच विशेष कार्रवाईआं कर रही ने। 165वें दिन पुलिस टीमां ने 15 हथियारों समेत 570 व्यक्तियों गिरफ्तार किया, जिस नाल मुहिम की शुरुआत तो बाद कुल गिरफ्तारियां 43,697 हो गई ने। इस तो अलावा 258 व्यक्तियों विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमां ने कार्रवाई दौरान 15 भगौड़े अपराधियों गिरफ्तार किया है। लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93-946-93-946 राही गुप्त रूप विच लोड़ींदे अपराधियों ते गैंगस्टरां बारे सूचित कर सकते ने अते अपराध ते अपराधिक गतिविधियां बारे सूह भी दित्ती जा सकती है। नंबर एक बार फिर सुन लो 93-946-93-946। इस दौरान पुलिस टीमा ने नशे विरुद्ध अपनी मुहिम युद्ध नशे विरुद्ध 490वें दिन भी जारी रखद 58 नशा तस्कर गिरफ्तार किया। उन्होंने कब्जे 3.5 किलो हेरोइन, 2.3 किलो अफीम, 627 नशीलिया गोलियां और 36,900 रुपए की ड्रग बनी बरामद की गई। इस न सिर्फ 490 दिनों गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की गिनती 71,592 हो गई है। नशा छुड़ाओ मुहिम के हिस्से वजो पंजाब पुलिस ने 11 व्यक्तियों नशा छुड़ाओ और मुड़ वसेबे का इलाज कराने लिए राजी भी किया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री अकाल तख्त साहब का स्थापना दिवस अज श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया गया। इस संबंध में श्री अकाल तख्त साहब विखे समागम होया, जिस विच श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ते तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज, तखत श्री दमदमा साहब के जथेदार ज्ञानी टेक सिंह समेत प्रमुख शख्सियतों ने हाजरी भरी। श्री अखंड पाठ साहब के भोग मगरों हजूरी रागी जत्थे वालों गुरबाणी कीर्तन किया गया। अरदास ते पावन हुक्मनामे बाद संगतां नाल इतिहास की सांझ भी पाई गई। इस मौके श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने संबोधन करदिआं संगतां नूं श्री अकाल तख्त साहब के स्थापना दिवस की वधाई दित्ती। आपने संबोधन च उन्होंने यह भी कहा कि अज नशियां वर्गी भयानक बुराई तो अपनी नौजवानी नूं बचाउण लई हर सिख नूं अगे आउणा होएगा। जदों नौजवानां नूं गुरू नाल ते सेवा नाल जुड़े जाएगा तो हर तरह के नशियां तो दूर रहणगे। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म हुईयां। साडा xhandle@eirrnew जलंधर राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: FM बैंड 100.2 MHz ते असी आकाशवाणी दे पटियाला केंद्र तो बोल रहे हां। साडे प्रोग्राम तुसी लाइव स्ट्रीमिंग जरिए news on AIR ऐप ते भी सुन सकदे हो। पेश है प्रोग्राम नगमे ते प्रोग्राम लेके हाजिर है आनंदिता शर्मा। असी इस प्रोग्राम च तुहाडे वल्लों भेजे खत शामिल करदे हां ते सुनवाउंदे हां तुहाडी पसंद दे हिंदी फिल्मी गीत। ते प्रोग्राम च अगला गीत शामिल कर रहे माफ करना अगला खत शामिल कर रहे हां गांधी चौंक रोपड़ तों हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक ते मीका विरक होरां दा। करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर भुच्चो कैंचियां तों प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन, कुलदीप एकम, दमन ते अभिजोत। ਚਕਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪੱਪੂ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ਦਿਲ, ਸੰਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਲ, ਹਸਮੁਖ

0: उम्र है,
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।

0: तक के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जी तुसी जुड़े हो आकाशवाणी के पटियाला केंद्र के नाल, प्रोग्राम चल रहा है जी नगमे। तो अगले गीत लई सानू खत भेज रहे ने लक्सर हरिद्वार तो ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां फरमाई सानू भेज रहे ने जी। हरियाणा तो बिलू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने छत्तीसगढ़ पाटापारा जतरंगी तो द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार ते छविंद्र कुमार वर्मा। बड़िया जालां तो भुपिंदर कौर सैनी, अनारकली बाजार जगराओं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका ते आशीष मल्होत्रा, बेबी गाव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक। त्याओ सुनते इन्हां सारे दी रली मिली फरमाइश ते फिल्म ताल चों ये गीत आवाज़ां ने सुखविंदर सिंह अते अलका याग्निक दी।

जी प्रोग्राम चल रहा है जी नगमे ते प्रोग्राम च अगला गीत सुनांगे फिल्म बातों बातों में चो ते इस गीत लई फरमाइश सानू भेज रहे ने पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो मलकीत सिंह कुड़ियाना मनजीत कौर दीपेंद्र सिंह गुरशब्द सिंह ते इन्हां दा पूरा परिवार फरमाइश सानू भेज रहे ने कुलवंत सिंह मलोट तो। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला शोभा नायक ते जे एस नायक कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश पत्ता नीलम नितिन पलक करण गीतू हार्दिक निहारिका ते वंश पत्ता करनाल तो सानू फरमाइश भेज रहे ने ज्ञान भूषण शर्मा ते सोमनाथ कालिया पटेल नगर मलोट तो रमेश कुमार जजोरिया गीता रानी गगनदीप ते बेबी आरजू जजोरिया ते आओ सुनदियां इन्हां सारे रली मिली फरमाइश ते गीत आवाज़ां ने किशोर कुमार ते आशा भोसले दी।

0: सड़क ते वाहन चलाउंदिआं जां पैदल चलण समय आवाजाई दे नियमां दी पालना करो
1: अते देश दे चंगे नागरिक बनो।
0: आप भी बचो, दूजिआं नूं भी बचाओ।
2: सड़क सुरक्षा सब दी सुरक्षा। आप भी बचो, दूजिआं नूं भी बचाओ। हसदे हसदे घर तो जाओ, हसदे हसदे घर नूं आओ।
3: जी प्रोग्राम चल रहा है जी नगमे ते अगले गीत लिए सानू फरमाइश भेज रहे ने गिदड़बाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन पायल ते बेबी हिनाशा। फरमाइश सानू भेज रहे ने समाना मंडी तो लाड़ी सिंह धालीवाल, मुल्लापुर दाखा मंडी तो बिट्टू जैन, मट्टू राजेश, अरुणा, दीपक, गौतम, रसगुल्ला, नगीना, बाणी, बॉबी अरिहंत, सुरबी ते जेबी जैन। पिंड सियोना तना सिंह खरौड सानू फरमाइश भेज रहे ने, नाल इन्हां दे परमवीर सिंह खरौड, पाल कौर, मनवीर कौर, मनजीत कौर ते अर्शदीप कौर। मैस गेट नाभा तो सोमदत्त कैरव, ज्योति राणी ते गुरमन्नत। सैक्टर 67 मोहाली तो फरमाइश सानू भेज रहे ने टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका तो सानू फरमाइश भेज रहे ने शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज अते साहिल। ते आओ सुनदे इन्हां सारे दी रली मिली फरमाइश ते फिल्म आखमी चोली चों ए गीत, आवाज़ है किशोर कुमार ते लता मंगेशकर दी।

आखिरी सांस ली। अपनी पुरअसर आवाज, स्टेज पर शानदार कारकर्दगी और गायकी के मुनफरिद अंदाज के सबब तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ पूरे भारत बल्कि बैन अल-अक्वामी सतह पर भी एक नई शनाख्त दी।

0: भारतीय लोक आर्ट के लिए उनकी गैर मामूली और गिरां कद्र खिदमात के एतराफ में उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन डेकर और वजीर आला विष्णु देव साय ने भी तीजन बाई के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है और लोक रिवायात को महफूज रखने, नीज छत्तीसगढ़ की सकाफती विरासत को आलमी मंजरनामे तक ले जाने में उनके गिरां कद्र रोल की सताइश की है। डॉक्टर तीजन बाई की आखिरी रसूम दुर्ग जिले में उनके आबाई गांव गनियारी में आज शाम पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज साबिक मरकजी वजीर रामविलास पासवान के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान को अवाम और मुल्क की खिदमत के तई उनकी लगन और अज्म के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हौसला अफजा रही है। यात्रा शुरू होने के पहले दो दिन के दौरान 32,313 अकीदतमंदों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने और कहीं कहीं इंतहाई मूसलाधार बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और औसत बारिश होने की पेशगोई की गई है। ख्वातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार छठी कामयाबी हासिल की थी। खास खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने अबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस एलएनजी की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तिहार हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। और छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: FM बैंड 100.2 MHz ते लाइव स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज ऑन AIR ऐप ते असी आकाशवाणी दे पटियाला केंद्र तो बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी मुताबिक इस वेले ठीक दोपहर दे 2 बज रहे ने। पेश है फौजी वीरां लई प्रोग्राम सरफरोश ते प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ मैं आनंदिता शर्मा। त्याओ सुनदे आ प्रोग्राम च पहला गीत फिल्म केसरी चों।

0: दोपहिया वाहन चलाउंदियां हेलमेट जरूर पाओ।
1: दोपहिया वाहन दे मगर बैठी सवारी ले भी हेलमेट पाउणा जरूरी है।
0: सड़क ते चलदियां आप भी बचो दूजियां नु भी बचाओ। सड़क सुरक्षा सबकी सुरक्षा।

0: वाहन चालक ध्यान रखन।
1: वाहन चलाउंदियां आरसी, बीमा अते प्रदूषण सर्टिफिकेट अपने कोल रखो।
0: ड्राइवर अपना लाइसेंस हर वेले अपने कोल रखे।
2: ते इस दिन आली आज दा प्रोग्राम सरफरोश खत्म करन दी आनंदिता शर्मा नूं दिओ इजाजत। FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ ते लाइव स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते असीं आकाशवाणी दे पटियाला केंद्र तों बोल रहे हां। हुण तों कुछ ही पलां विच जानी ठीक 2:15 ते तुसीं सुणोगे दोपहर समाचार तहत हिंदी विच खबरां साडे दिल्ली केंद्र तों। खबरां लई करो कुछ पल उड़ीक।
3: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जल डमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने LNG पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
4: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से LNG की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
3: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
5: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे। समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
3: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
6: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
3: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।

0: सिग्निफिकेंस इज इमेंस।
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: एंड ग्रेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन दिस टू लार्ज कंट्रीज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: दीने दीने वो मारे ढालते हैं।
5: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
6: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
7: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
5: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक

0: किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ ते लाइव स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते असीं आकाशवाणी दे पटियाला केंद्र तो बोल रहे हैं। स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक ठीक दोपहर दा 2:30 बज रहा है ते पेश है प्रोग्राम दो तेरियां दो मेरियां। प्रोग्राम लेके हाजिर है आनंदिता शर्मा। ते इस प्रोग्राम दे विच अज कोई भी विशा नहीं है ते तुसीं खुल्लियां गल्लां साडे नाल सांझियां कर सकदे हो। पर हो सके तां असीं ऐसियां गल्लां सांझियां करिए जो दुनिया नूं सेध देण वालियां होण ते कोई काम दी गल होवे। तो फोन करन लई तुसी साडा नंबर करना है जी डायल। साडा नंबर है 2282-494-0175 पटियाला दा एरिया कोड है। जिनी देर तक कोई स्रोते साडा अपने विचार सांझे करन लई साडे नाल जुड़दे ने उन्नी देर तक असी सुन लैने शहरी मान दी आवाज़ च एह गीत।

0: हेलो,
1: मैडम जी, सत श्रीकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। नाम दा स्वप्ना जी।
1: दिलबर बोलदा जी,
0: जी दिलबर जी, कितों गल कर रहे हो
1: शहर खन्ना पिंड बूले पर जी।
0: जी? ते जिवें अज कोई विशा नहीं है तां फिर अज किस विषय ते गल करोगे?
1: बुजुर्गां बारे गल करनी।
0: ठीक है जी, बुजुर्गां बारे गल करते हैं। ठीक है जी, वैसे तुसी की करते हो?
1: मैं हलवाई दा कम करदा जी।
0: ठीक है जी, तुसी हलवाई दा काम करते हो। ठीक है,
1: हाँ जी,
0: ते फिर अज किस विषय, मतलब विषय ते फिर दसो अज की गल करोगे बुजुर्गां बारे?
1: मैं तो मैडम जी को बेनती है मेरी सारे
0: जी
1: भाइयों ने भैन श्रोतिया ने भी
0: जी जी
1: ज्योंदे जी माँ प्यो की सेवा करो।
0: जी बिल्कुल, वही जिवें पहला भी
1: जिन्हें
0: गल की है फोन ते
1: हाँ
0: कि
1: जी
0: टाइम रहिंदे जिहड़े रिश्तियां दी सानू कदर करनी
1: हाँ जी,
0: चाहीदी
1: तो
0: है। जी
1: मैं अपने अखी देखे ज्योंदे जी माँ प्यो की सेवा नहीं करते। जब उसकी डेथ हो जाती है फिर सारा कुछ चलाते ने।
0: बिल्कुल सही गल
1: ज्योंदे
0: है
1: जी
0: जी
1: उन्हें पानी का गिलास नहीं पुछते जी, पानी का गिलास।
0: जी जी बिल्कुल सही गल है
1: हाँ जी हाँ
0: भी,
1: जी,
0: समय रहिंदे सानू कदर करनी
1: ते
0: चाहीदी है जी।
1: हाँ उन्होंने तो सारा कुछ लै के फिर उन्होंने धक्के मार के बिरध आश्रमां च छड्डदे ने। ये बहुत माड़ा काम है इंसान ने, क्यों
0: जी
1: जिन्हें
0: बिल्कुल,
1: माँ बाप ने अपन दुनिया दिखाई है ओदे पैरां
0: कदर
1: जन्नत है,
0: करनी चाहिए जी।
1: ओदे पैरां जन्नत है जी। अपन माँ बाप की सेवा करांगे थोनू किसी चीज का घट नहीं देना।
0: जी वैसे भी फिर एक साथ, वैसे भी थोनू कहो भी वड्डे
1: हाँ
0: बुजुर्गों
1: जी
0: का या घरदियां का थोड़े को साथ ही बहुत वड्डी गल हुंदी है।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो साडी एक सच्ची बाँ है जी, साडा
0: जी
1: रोका
0: जी
1: है समझे
0: जी
1: समझे,
0: बिल्कुल, ठीक है जी,
1: साडे
0: सत
1: सिर
0: श्री
1: ते
0: अकाल
1: छाइयां
0: जी
1: जी।
0: जी जी ठीक है जी, कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल जी।

0: हेलो,
1: हेलो मैडम जी। लाल
0: सत श्री अकाल जी।
1: जी जी
0: जी अपना नाम दसो, कौन गल कर रहे हो?
1: सिंह मैडम जी,
0: जी रणदीप सिंह जी, जगह का नाम भी दस दो, भी तुसे कितों फोन लाया।
1: नाभा मनोहर फर्नीचर मैडम जी।
0: ठीक है जी, नाभे तो गल कर रहे हो। तो जिमें अज प्रोग्राम च कोई विशा नहीं है, तो फिर अज किस विषय ते गल करोगे?
1: हाँ जी मैडम जी, बंदे नु गुस्सा नहीं करना चाहिए जी। हाँ
0: जी
1: जी
0: जी गुस्सा नहीं करना चाहिए, वही है कि छोटी मोटी गल जो तुहानू लगता है कि टाइम ते गुस्सा आ सकता है, पर वो चीज़ नू असी सबर करके थोड़ी देर लिए शांत रहिए, तां लड़ाइयां जड़ियां ना होन, ते मतलब सौखा सुलझ सकता है मसला। जी
1: हाँ जी
0: जी जी ठीक है जी, कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैडम जी, सत श्रीकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी।
1: मैं परमजीत सिंह, पिंड सरुस्तीगढ़ तो जी।
0: जी परमजीत सिंह जी, ते अज जिवें खुलियां गल्लां ने, तां फिर अज किस विषय ते गल करोंगे?
1: मैडम जी, गल इस तरह जी, भी धरती हेठला पानी मुक रहा जी। हाँ जी, धरती
0: जी जी बिल्कुल।
1: ते रुख नहीं रहा, कोई वड्डा रुख नहीं, माड़े मोटे या फुल फलाके जे लाए लोगों ने। प्रदूषण देखो किन्ना है जी।
0: जी जड़े माड़े मोटे लगे वो भी देखो अपनी जरूरत करके असं वो भी वड्डी जाने हैं।
1: हाँ
0: जी
1: जी, तुसी तो कई जाने भी रुख लगाओ, तो
0: जी
1: जो
0: जी
1: जो
0: जी
1: लाई रुख लगाओ, बेलियो रुख लगाओ, कोई नहीं
0: जी
1: चाहता
0: जी
1: जी। कई मैं भी जाना, तुसी भी कई जाने जी, अमल कोई नहीं करता है जी।
0: जी उही है कि असं कहते भी हाँ कि तोड़ा कोई खास दिन है, तोड़ा जन्मदिन है, किसी भी दिन एक रुख जरूर लाओ। जी
1: कई जाने पर लाऊंदा कोई नहीं, जान के दे लो पंडा जी, कहने लाया हो जी,
0: जी उही है कि लोग गलत अमल नहीं करते। जी
1: नहीं करते। हाँ जी, सरकारा ने देखो पानी फ्री दिता है,
0: जी
1: बिजली फ्री, पानी फ्री है जी। फ्री
0: जी जी
1: चीज की कोई वैल्यू होती है, तुझे आप सोच विचार करो है जी।
0: जी वो एवं होंगे जिन्ने ज्यादा फालतू है उन्हें आपा ज्यादा बर्बाद करी
1: हाँ,
0: जाने
1: फिर
0: हैं।
1: आपां नूं फिर एदा कोई हरजाना देना पैणा।
0: जी जी
1: प्रदूषण
0: जी
1: वध गया जी, ये थोड़ा सोचण वाली गल है जी। ये सरकारा आपदी सूरत कुर्सी वास्ते इन्हां ने फ्री कीता, फ्री राशन लोकां नूं दे जांदे, फ्री दाल चीनी घ्यो सब कुछ दे जांदे सिर्फ वोटां वास्ते है जी।
0: जी बिल्कुल सही गल है जी।
1: परमात्मा ने सब नु हाथ पैर दिते, आपकी किरत करो ते मलवंड छको, जिदा बाबे नानक जी किरत करो ते वंड छको, और आप भी छको ते
0: दूजे
1: बाकी लंगर
0: जी
1: हरी
0: जी
1: लोग
0: जी
1: अनुसार उन्होंने दियो जी।
0: जी बिल्कुल
1: ते काम सारा उल्टा हो रहा जी। आने वाला भविख जेड़ा बहुत खतरनाक है जी, थोड़ा जा सोच विचार वाली गल, सब नु सोचना चाहिए, सब वास्ते हानिकारक है जी ये।
0: जी वही है कि असी पहला अपने बारे भी सोचिए भी साडा जीवन भी एदे नाल बहुत प्रभावित हो रहा है, ते नाल असी
1: हाँ
0: बाकियां दी भी मदद करिए इस तरह कि असी थोड़े जे रुख जरूर लाउण दी कोशिश करिए।
1: हाँ जी, वो ना जी, तेन मैं छोटी जी गल दसा, कितने कोई मंत्री आया सीगा जी, वो
0: जी
1: कहिंदा भी मैं, वो कहिंदे पेड़ लाउणा जी, पेड़ लियाओ, मौके ते पेड़ ना मिलिया जी, कि रुख लाउण वास्ते है।
0: जी जी
1: जिहड़े लाउण वाले, वो कहिंदे चलो प्लास्टर लिया देने, मंत्री नूं कहिड़ा पता भी दूए असली है कि नकली आ।
0: जी जी जी
1: उहनां ने प्लास्टर दा लिया के लवाता, ते वो जदों चले गए ला लू के बाद विच
0: मतलब
1: जदों
0: वो कह
1: मिलिया
0: लो भी
1: ते
0: उन्होंने
1: प्लास्टर,
0: फर्जी पूरा किया बस एक दिखाउण वास्ते।
1: हाँ सब फर्जी पूरा लगे जी, कारण कोई अमल कोई नहीं करता है जी।
0: जी जी बिल्कुल सही गल
1: हाँ
0: है।
1: जी,
0: ठीक
1: यही
0: है
1: भी
0: जी,
1: गल
0: वही है,
1: है।
0: सानू कुदरत दी संभाल करनी चाहिए है।
1: हाँ बिल्कुल, हाँ जी, इन्ने तीन दिन औखे होवोंगे जी आने वाले समय
0: जी
1: चाहिए।
0: जी
1: जी
0: जी ठीक है जी, कॉल करने लिए शुक्रिया जी। सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी।
2: ਭਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਸਾਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭੇਤ ਅਸੀਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ ਧਰਤੀ ਬਚਾਓ।

फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ सूर्यकांत सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी की पसंद पर सुनिए ये गीत, जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक।

खूबसूरत और चेतन नाहटा। आप सभी ने सुनना चाहा है बहू बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत। सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: अब कार्यक्रम मनचाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साहब।

कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाले ही बताएं। उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंगी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की, और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है, सौदागर फिल्म के लिए ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखू जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव प्रशांत, राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
1: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
3: कौन रानी इरावती?
1: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों है?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
3: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
1: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की साथ पूरी।
4: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
5: भला हम कौन होती हैं
4: महाराज की साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
5: चलो।
1: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
3: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था। मैं

0: भी देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
1: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
2: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
1: परंतु देवी,
2: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
1: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
2: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आलीपुरी का हम चले यहाँ।

0: अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गए और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन ना रहा हो, कान में सुनिए।
1: हाँ।
0: मैं नाग को बांध करके नाग मुद्रा लेके
1: ओ जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है, इस प्रतिहारी जैसे इनको सब समझा दो।
0: अभी समझाई देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए।
2: जयसेन इधर आओ।
3: कहिए आज ये गौतम।
2: कान में सुनो।
4: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए,
5: आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पाँव की पीड़ा कुछ कम हुई?
4: आज तो कुछ कम है देव।
5: अरे शियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
6: मर गया महाराज, मर गया। मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी, भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
3: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहां फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल परी का सांप ने मुझे डस लिया महाराज। ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
4: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े
6: हैं। मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला न हो।
6: सारे शरीर में
4: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
5: अरे गौतम, तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
6: मैं आपका पाल सका हूँ, सिनाथ मेरे बाद मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
3: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहाँ ले जाना होगा महाराज।
1: तो संभाल कर इन्हें वहाँ ले जाओ।
3: देव की जैसी

0: या देव, कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हुई हो वो क्षमा
1: नहीं, नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
2: याद आया महाराज, वैद्य ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
1: मेरी मेरी संगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
2: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए।
3: जैसे ये अंगूठी मुझे दो। कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमदवन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन?
1: अरे गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
0: ये देखो महारानी की अंगूठी।
1: अंगूठी तो उन्हीं की है।
0: तो तुरंत मालविका और बकुला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
1: ओह,
0: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
1: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
0: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
1: ठीक है ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
0: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
2: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो।
0: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीप भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं आखा नहीं रही हूँ।
1: क्यों सखी,
0: चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
1: ये
0: छोटी रानी इरावती है।
1: ओ
0: सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
1: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
0: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
1: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
2: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
2: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रूठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास्त्र तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी जी जय हो।
2: प्रिय,
3: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
2: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न में भी कभी भेज

0: नहीं हुई। महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
1: उत्तर क्या दें बकुला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
2: अरे बकुला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरन चले जा रहा है। आ आ, उसे भगा ले, चल चलिए। महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह के द्वार पर हूँ।
0: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
3: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
3: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
3: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आर्य गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका। हाँ?
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन।
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंभे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ। ये
4: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
5: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
6: महाराज रुकिए, उधर न जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
5: मैं कहाँ है सांप?
6: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
5: देवी इरावती,
1: सच्ची बकुलावलिका, ये कैसा है? बकुलावलिका, तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आज्ञा।
2: ओह तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया, पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर कैसा हमने आके रहा।
7: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सेकी बकुला वलिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
8: अच्छा तो ये सब इस बामन के करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
4: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे प्रश्न देता?
8: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
9: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहरे अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के फूलने का

0: विद्यापति महाराज अग्निमित
1: ब्रह्मगमन उत्सव में बला रहे
0: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज।

0: जय हो। विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव।
2: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की सात पूरी हो।
0: आर्य पुत्र, फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
3: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
1: ले आओ।
3: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
4: महाराज की जय हो। महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
4: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आके देव, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
4: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो। राजकुमारी की जय हो।
0: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी?
4: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
1: कैसे?
4: सुनिए महाराज, आपके सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
1: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
4: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या हुआ?
4: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
2: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
1: भगवती, आप?
4: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
2: हाँ वही है। प्रणाम भगवती।
5: कल्याण हो।
1: भगवती, क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
2: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
1: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
2: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
6: ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यहाँ तो दिन में भी जैसे रात हो गई हो।
1: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
2: भैया आप भी तो?
1: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
6: अरे क्या हुआ? क्या हम लोग एक साथ रुक क्यों गए?
7: जान जारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
6: वही हुआ ना जिसका भाई था, उन्होंने ले लिया है।
8: जाइए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: आ रहे। अरे भैया लगुलुहान होकर इधर आ रहे। अरे डाकुओं ने भैया को अकेले ही खेल दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर हम असहाय रह गए।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूट कर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
3: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
1: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
5: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधे राज्य का शासक बना दिया है।
6: उनके प्राण बच गए यही बहुत है।
4: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
5: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनों ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
5: फिर क्या हुआ?
2: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र

0: पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
1: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञसेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
0: जयसेन,
2: आज्ञा दे।
0: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मोह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, मैं वो वचन पूरा करना चाहती हूँ। फिर कोई विघ्न न डालें।
2: देवी की जैसी आज्ञा।
0: मालविका, इधर आओ, प्रस्तुत हो देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया, उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लजा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
3: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजा ही करते हैं।
4: श्रोताओ, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
5: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए। राइट, तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलन के रोल काफी किए।

0: अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
0: है,
1: लग जाता है।
0: टैग लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं। उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना, ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8, 10, 12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की। पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता।
1: ओके।
0: तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहां एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना इट सेल्फ एक बड़ी बात थी। और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था भट्टाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं? बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड
0: तो
1: जेंडर।
0: थर्ड जेंडर जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है, अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो, वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी
1: ठीक है,
0: लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहां गाना सुनते हैं।

अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूं, देखता हूं दोस्तों को लेकर।

0: जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे। हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: ओ
0: कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा ची कामा कराई जात तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि एक बार फिर से वो
0: पड़ेगी
1: जनाना रोल
0: हाँ
1: आ रहा है।
0: जनाना रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है।
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस
1: और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी
0: ज्यादा
1: रीलें चलती हैं, और
0: हाँ
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं
0: करेक्ट
1: जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी
1: बिल्कुल,
0: सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त
1: एटीज वाला दौर जो पूरा
0: हाँ हाँ
1: था।
0: हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्मजी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो
0: तो
1: चलती
0: वो
1: है।
0: चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुंदा, के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट, कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूं वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ क्या ये वो, तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे, और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में
1: और बहुत खूंखार रोल था वो
0: बहुत
1: उनका।
0: ही ज्यादा काला नाग, काला
1: हाँ।
0: नाग।

0: नाग, राइट? डीबीडीएन या काला नाग, ऐसा ही कुछ रोल
1: हाँ,
0: था।
1: और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है।
0: नाग हूं मैं, नाग काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट। ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना,
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे। हाँ, और
1: अच्छा।
0: दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक
1: अरे
0: डायलॉग। तो
1: गजब।
0: बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल। उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी, भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते
0: हाँ
1: हैं जो कि
0: हाँ
1: एक विलेनिश रोल होता
0: रोल
1: है,
0: है।
1: खतरनाक
0: हाँ,
1: वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना
0: ओ मैं वो
1: मामला।
0: फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है,
1: बिल्कुल।
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है,
1: सिर्फ सुना है।
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूं वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश,
0: ओ
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है,
0: करेक्ट
1: वहां से
0: करेक्ट।
1: वो पूरी यात्रा जो है वो आगे
0: हाँ
1: बढ़ती है।
0: हाँ
1: तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहां अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ
0: करेक्ट।
1: आखिरी
0: आखिरी
1: रास्ता
0: रास्ता
1: फिल्म में।
0: में
1: वो भी बड़ा खतरनाक रोल था,
0: बहुत ही बहुत ही, और उस
1: बहुत ही
0: समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ
1: ऑफ
0: था,
1: कोर्स,
0: कलाकार
1: बिल्कुल।
0: के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट? सब लोगों को ऐसा जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे, और पापा बहुत कूल हुआ करते थे। मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे, मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ
0: एग्जैक्टली
1: बच्चन के सामने
0: सामने।
1: विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे, जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिव जी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं।
0: पूरी
1: वो
0: तरह से।
1: जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है।
0: पूरा पूरा इस दैट इज अगेन बिकॉज जैसे मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूं वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना है
1: अपना फर्ज निभाओ।
0: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट? तो
1: बिल्कुल।
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा खत्म की बात। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफ कोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, स्कूल
0: तो
1: में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है।
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। अब मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लक्की हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है। और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो। ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो, करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना। इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूँ फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था। मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से।
1: अच्छा।
0: हाँ। और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट एक एक घूट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा।
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे। और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना, बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है।
1: okay.
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है। और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी। और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद बाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे। पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है, या आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?

0: नहीं बिल्कुल नहीं
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखते बैठेंगे.
1: सख्त मनाही.
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे. लोगों ने बहुत प्यार किया. तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है. मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है. और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त, करीबी दोस्त है, उनकी फैमिलीज, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे. तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी. बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए. औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है. तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है. लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़. एक घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था. और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया. खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे. और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था. हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं. पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी. तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए.
1: अरे अरे अरे,
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए. वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते.
1: ओहो,
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ. तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं. लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है.
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं. ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो. लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं.
1: बिल्कुल, यहां हम साथ साथ हैं, फिल्म का गाना सुनते हैं.
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट.
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो, वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था. मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना, तो
0: जी
1: उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था.
0: अच्छा,
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी.
0: अब वो
1: ओके,
0: उनके पंच आते थे।
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे. कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे, तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है.
0: फिर
1: ओके,
0: वो जवाब बाद में
1: हाँ,
0: आएगा।
1: वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है. तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था, और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था. जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उनपे बैठ गई, और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे. एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था. उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था.
0: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी।
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था, और कॉमेडी. और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल,
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ. इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में. चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन, और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन,
0: उनको डायलॉग्स
1: जो
0: भी मजेदार मिलते थे।
1: बहुत मजेदार मिलते थे. और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है आप बुरे होते हो, और आपका एक एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता. कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है. तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने वो किया. वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन।
1: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के,
0: हाँ,
1: ऐसी काफी सारी फिल्में हैं. और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
0: तो मुझे
1: काम
0: वो
1: किया,
0: दृश्य याद आ गया
1: बिंदु जी
0: जिसमें
1: के
0: वो
1: साथ
0: सो रहे हैं
1: काम
0: और वो
1: किया.
0: जगाने आती
1: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है. तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते. जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी. तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी. मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था. फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत. तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
0: हुकूमत, सड़क,
1: अर्धसत्य
0: है
1: दिखाऊंगी,
0: ना।
1: ये
0: बिल्कुल,
1: सारी फिल्में
0: इश्क
1: दिखाऊंगी.
0: का रोल तो बहुत ही अलग था।
1: बहुत
0: वो
1: ही अलग
0: तो क्या लीग थी वो।
1: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार. एक
0: हाँ
1: तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और
0: हाँ
1: टाइमिंग
0: हाँ
1: कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं, वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी,
0: बिल्कुल,
1: पर वो
0: लेकिन
1: इतनी
0: ये कुछ
1: ओवर द
0: अलग
1: टॉप
0: था।
1: नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी
0: यस
1: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था, तो
0: अच्छा
1: एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी,
0: बिल्कुल
1: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी
0: हाँ,
1: काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
0: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए।
1: प्लीज।

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी एनएफडीसी की फिल्म थी,
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे सुनील सुकतनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी, राइट। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ।

0: तो उस समय उन्होंने दोगी की थी। दोगी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे, पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है, दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी। तब
1: और
0: तक
1: बहुत
0: वो
1: महत्वपूर्ण फिल्म।
0: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी, क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
1: हाँ,
0: पापा को नहीं मिला, लेकिन उस फिल्म
1: फिल्म को
0: को
1: मिला
0: मिला
1: बाकायदा।
0: नेशनल
1: जी
0: अवार्ड।
1: जी
0: यस।
1: जी
0: तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे,
1: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे।
0: इंटेंस काम कर रहे थे, बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूं, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोगी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोगी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं, तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है, क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे।
1: जी
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप दो प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा रोल है, तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवान घेवान कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी। कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे।
1: राइट।
0: अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है। तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर वन मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु
1: गुप्त
0: पुरुष
1: मिली।
0: मिली, गुप्त मिली। एग्जैक्टली। और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी। तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था,
1: बिल्कुल।
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी। तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, एनएफडीसी की ही फिल्म है,
1: जी
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर। तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो

0: फिल्म बनाई गई है, वहाँ के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है, तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म.
1: बिल्कुल, यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ.

Go.

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

सरकार ने तरल पदार्थ सरकार ने तरल कुदरती गैस LNG से सप्लाई ते लागू हंगामी पाबंदियां हटा दित्तियां ने। खेतीबाड़ी ते देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी कानून सफलता नाल लागू होने ते खुशी जाहिर कर दिया किया है कि अगले 5 सालों च इस कानून तहत 7.5 लाख करोड़ रुपए तो वादा निवेश किया जाएगा। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम ते पेड इश्तिहारां विच बच्चियां दे जिनसी शोषण ते अश्लील समगरी दे प्रसार नूं लै के मैटा नूं सख्त चेतावनी जारी कीती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत अते ओमान दे सरकारी दौरे ते होणगे।

0: जी
1: मौसम मिनट मिनट बाद चेंज हो रहा है सवेर तो।
0: जी जी बिल्कुल। ते मैं सोचती कि मैं तां इत्थे सी सवेर तों कि तुसीं बाहरों आए हो ते मौसम दा की हाल है
1: मैं
0: बाहर।
1: सवेर तो ही अज मौसम का जायजा ले रहा सी। अज
0: जी
1: कदी
0: जी
1: धुप चढ़ रही है, कदी ठंडी
0: जी
1: हवा, ते कदी विच विच कणियां भी चल रही ने।
0: जी जी
1: तो जिवें लग रहा है कि मौसम समझ नहीं आ रहा कि किवें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं।
0: वही है कि समझ नहीं आंदा भी केड़े कपड़े पाउने ते केड़े नहीं पाउने
1: नहीं,
0: हैगे।
1: कपड़े तो देखो गर्मी दे ही चलणगे क्योंकि हजे
0: जी
1: गर्मी है, बट यह है कि जो मौसम है बाहर निकलने वाले नूं बड़ी दिक्कत दे रहा है कि
0: मतलब
1: बंदा
0: वही
1: कह
0: कि समझ
1: रहे
0: नहीं आता कि रेनकोट लेके जाना है, उदो
1: जी।
0: लगता है धुप है, फिर थोड़ी देर बाद लगता है मीह आ गया, अभी हुण की कीता जावे।
1: तो जदों बंदा निकलन लगता है तो कणियां शुरू हो जाती है, तो जदों
0: जी
1: बाहर निकलता है फिर धुप चढ़ जाती
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: इसे तरह की मौसम बहुत तकड़ी करवट ले रहे हैं। तो मौसम के नाल नाल बंदे नूं भी ध्यान रखना चाहिए है क्योंकि हुण बारिशों का सीजन शुरू हो रहा है।
0: जी बारिशों का मौसम भी जिवें शुरू हो गया, ते वही जिवें कह रहे हैं कि मौसम का कुछ पता नहीं लगता, तो
1: जी
0: इसी तरह आपां अपनी सेहत प्रति भी थोड़े जिहड़ी सावधानी वरत लईए,
1: जी
0: क्योंकि वेखा जाता है जदों बरसात होंदी उदों आपां ऐ सोचते हैं कि मीह पै रहा है जी,
1: जी
0: चलो पकौड़े खा लिए थोड़े जे, है ना,
1: जी
0: वी आम ही हो जाता, कहिंदे पकौड़े बना लैंदे आ, चाह नाल पकौड़े खावांगे।
1: बिल्कुल
0: पर वेख्या जांदा है कि इस मौसम 'च जिवें आपां कोई एवें तली चीज़ खाने आ तां साडा गला बहुत छेती जिहड़ा खराब हो जांदा है।
1: जी।
0: जी तां इस प्रति सानूं सेहत संबंधी भी थोड़ी
1: देखो
0: जी
1: स्वाद प्रति
0: जी
1: असीं किसी पर स्रोते नूं रोक नहीं सकते
0: जी
1: क्योंकि स्वाद नाल ही कहिंदे ना भी हर कोई कहिंदा भी मैंने खाना जरूर है।
0: पर जरूरी नहीं है, देखो जिवें तुसीं कहा
1: हाँ
0: स्वाद दी गल है,
1: जी
0: पर सेहत तो उपर कुछ भी नहीं हुंदा।
1: जी बिल्कुल सही गल कही है।
0: जी
1: सेहत दे नाल ही कहिंदे ना जिवें अपनी जीवन है सेहत दे नाल ही है सब कुछ। ते इस तो इलावा कि मैनूं ये भी एक गल चेते आ रही कि बारिश दे मौसम दे विच ना थां थां जदों पानी खड़ा हो जांदा है तां इसदा भी सानूं खास ध्यान रखना चाहिदा है।
0: जी उसका यही ध्यान है, जिवें मैं पहला भी इसी सवेरे गल कर रही सी इस बारे कि इसका ख्याल इदा ही रखा जा सकता है कि आपां की करिए भी, जिवें तुहानूं पता लग रहा है भी कोई चीज़ जिहड़ी है भी उहनूं ठीक करन दी लोड़ है,
1: जी
0: कि इहदा सानूं नुकसान बरसातां 'च ज़्यादा हो सकदा है,
1: जी
0: तां कोशिश करिए कि उह चीज़ां आपां जिहड़ियां ने पहलां पहलां ही ठीक कर लईए,
1: जी
0: तां जो मीह हनेरी तों बाद सानूं औखा ना होवे। जिवें अज ही 2-3 दिन तों मेरी अज मैनूं किसी ने फ़ोन करके कहा सी कि जिवें आपां देखदे हाँ कि साडे किसी दी उत्थे मौत हो गई, कि
1: जी
0: उन्हां ने जिहड़ियां तारां खुल्लियां छड्डियां होईयां सी
1: जी
0: खेतां 'च,
1: जी
0: ते जदों उत्थे पाणी आया फिर उहनां दी करंट लगन कारण जिहड़ी मौत हो गई।
1: जी
0: तां उही है कि आपां इह चीज़ां दी संभाल पहलां पहलां कर लईए, क्योंकि इह चीज़ां बाद 'च बहुत दुखदायक हो जांदियां ने, ते बाद 'च फिर सिर्फ गल्लां ही रहि जांदियां
1: देखो
0: ने।
1: जी पिछले साल साढ़े पंजाब ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतया है हड़ां के करके लगा लो। तो कहते हैं ना भी देखो बारिश भी उन्नी की चाहिए है जिनी लोड़ है,
0: जी
1: तो ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी की संभाल बहुत मुश्किल है। तो
0: जी
1: ये साढ़े मनुखी नुकसान झेलने पै सकते हैं। इन्हों तो अलावा कि जड़ी है कि बीमारियां जे जब तक मेरा ध्यान जाता है कि साढ़े लोग खास करके जिथे पानी इकट्ठा हो रहा है
0: जी
1: इसनों रोक के मच्छर मक्खी को रोक सकते हैं क्योंकि आने वाला तुम्हें पता है इस समय बारिशों तो बाद डेंगू मच्छर का बहुत तिकड़ा प्रभाव पैदा है।
0: जी वही गल कर रहे हैं कि जिवें अगर तुहानूं लगदा है कि तुहाडे नेड़े तेड़े कोई टोया है ना, जिथे
1: जी
0: भी तुहानूं लगदा है भी इहनूं भराया जा सकदा है कि बाद च पानी खड़ा हो सकदा है,
1: जी
0: कई वारी इन्ना औखा हो जांदा कि जगह जगह होवे कि इक बंदा सोचदा है भी मैं ही क्यों करां,
1: जी
0: फिर उत्थे एवें हो सकदा कि आपां 4-5 लोकां जिहड़ा साथ लै के कुछ आपां करिए तां जो आपां उह चीज़ां नूं सुधार कर सकीए। देखो इह भी हो सकदा नाल नाल तुसीं अपना जिहड़ा है देखो जीवन भी सेफ कर रहे हो, नाल नाल दूजिआं नूं भी तुसीं बचा कर रहे हो दूजिआं दा वी।
1: जी
0: इस तरह ही करो कि जिहड़ी चीज़ है कि ठीक हो सकदी बरसात आउण तों पहलां उहनूं ठीक करा लो, क्योंकि इस तों बाद इह ना होवे हालात फिर अग्गे माड़े हो जांदे ने, फिर जिवें पहलां ही कहा सी फिर तां जी सिर्फ गल्लां ही रहि जांदियां ने।
1: जी ते गल्लां दे नाल नाल आओ एक गीत भी सुनदे हां,
0: जी बिल्कुल
1: लैंदे एक छोटा जिहा ब्रेक।
0: जी।

0: देओ इजाजत
1: जी।

एफएम बैंड 6.2 मेगाहर्ट्ज़ से लाइव स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप ते असी आकाशवाणी दे पटियाला केंद्र तो बोल रहे हैं। समा मिला लो इस समय शाम दे ठीक 5:30 बज चुके हैं ते हुण वेला हो गया है किसान वीरां ते किसान भैणां लई प्रोग्राम किसान वाणी दा। प्रोग्राम किसान वाणी विच अज गलबात की है करमजीत कौर ते जसप्रीत कौर द्वारा पुआधी विच। आओ सुनदे हां इस गलबात नूं।

0: जे थमें भी इस प्रोग्राम में अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनना चाहा तो थमें भी चिट्ठी या खत भेज का अपनी फरमाइश का गीत है जड़ा वो सुन सका। प्रोग्राम किसानवाणी पुआधी मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी पटियाला, पिन कोड है जी 147002।
1: जी, थमें इस पते पर जरूर खत भेजो और उम्मीद करा प्रोग्राम थानू चंगा लग्या होना। जांदे जांदे दसदे हैं भी इस प्रोग्राम में सहयोग रहा रणबीर सिंह राणा होरां का और पेशकश हुआ जी
0: सुकीन मोहम्मद होरां की।
1: इसके गैले। आज का प्रोग्राम किसानवाणी पुआधी खत्म करने की मैनू करमजीत कौर नू
0: और मैनू जसप्रीत कौर नू दियो
1: इजाजत।
0: इजाजत।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचावकर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक

0: सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 6.2 मेगाहर्ट्ज़ ते लाइव स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज़ ज़ोन एआईआर ऐप ते असी आकाशवाणी दे पटियाला केंद्र तो बोल रहे हैं। समा मिला लो, इस समय स्टूडियो की घड़ी मुताबक शाम के 6:05 हो चुके हैं। तो आओ हुण तुहाडे नाल सांझा करदे हाँ अज्ज दे आउण वाले प्रोग्रामां ते उहनां दा वीरवा ते उहनां दा प्रसारण समा।

दोस्तों, उम्मीद करते हैं तुहानू अज दा ये प्रोग्राम फरमाइशी गीत सैगमेंट पसंद आया होएगा। हुण मैनू सिमरन नू ये प्रोग्राम विबग्योर ख़त्म करन दी देओ इजाज़त। मुड़ होवेगी मुलाकात, तद तक सुनते रहो आकाशवाणी।

0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह, वाह,
1: क्या
0: साहब
1: बात
0: कमाल
1: है
0: है,
1: जी, क्या कह
0: क्या
1: रहे हैं, क्या कह
0: यहाँ
1: रहे हैं
0: जी को। शहदा साहब,
1: इरशाद
0: चिन
1: यारी।
0: साहब
1: जी, इरशाद
0: और परवाज साहब,
1: जी,
0: शेर
1: इरशाद।
0: सुनिए। हौसला हार के बैठा तो रहेगा
1: तन्हा,
0: तन्हा,
1: हौसला हार के बैठा तो रहेगा तन्हा।
0: हौसला
1: हाँ, क्या बात है।
0: हार के बैठा तो रहेगा तन्हा।
1: वाह,

0: जी। शेर देखिए,
1: अच्छा जी
0: ये
1: साहब,
0: तो कहिए के तुम्हें अपना बनाने के लिए
1: जी
0: आहा।

0: वाह वाह वाह
1: बहुत बहुत
0: वाह,
1: शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया साहबजादा अजमल शेरवानी साहब, बहुत ही खूबसूरत शेर आपने पढ़े। क्या मफहूम आप शायरी में लेके आए हो, जी चाह रहा था आपको सुनते ही रहें। आइए इस
1: शुक्रिया।
0: सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब मोहम्मद सादिक थिन साहब से। थिन साहब जो हैं वो स्कॉलर हैं, शायर हैं, और हमारे जो मौजूदा दौर का अदब है उस पर भी उनकी नज़र है। बहुत अच्छे शेर कहते हैं, इनसे दरख्वास्त करते हैं इनके कलाम के लिए। और मैं शेर ये पढ़ना चाहता हूँ कि किसी भी सिन्फ में पैदा तो बदगुमानी कर,
1: वाह।
0: किसी भी सिन्फ में पैदा तो बदगुमानी कर,
1: जी
0: गजल गजल है, गजल से ना छेड़खानी कर।
1: क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह
1: है,
0: क्या
1: जी
0: बात है,
1: बहुत
0: जनाब
1: अच्छा है
0: मोहम्मद सादिक थिन साहब।
1: जी, शुक्रिया। सरजमीने पंजाब के हवाले से गज़ल से पेशतर मेरा ये कत'आ मुलाहिज़ा फरमाएं।
0: इरशाद।
1: अर्ज़ किया है कि मस्त फिजाएं
0: वाह
1: खेत सुनहरे,
0: क्या बात है।
1: वाह, मस्त फिजाएं खेत सुनहरे,
0: सुनहरे।
1: मीठा इसका आब।
0: हाँ हाँ
1: क्या
0: हाँ
1: मस्त फिजाएं खेत सुनहरे, मीठा इसका
0: आप
1: आब,
0: जी।
1: रावी के हैं संग संग बहते जिहलम और चनाब।
0: चनाब।
1: वाह
0: वाह वाह
1: क्या
0: वाह
1: बात,
0: वाह वाह
1: सतलुज और ब्यास भी करते धरती को शादाब।
0: जी जी
1: ये
0: जिंदाबाद।
1: मेरा पंजाब है सादिक, ये
0: ये
1: मेरा
0: मेरा पंजाब।
1: पंजाब।
0: वाह वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: सादिक साहब,
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: बेशक बेशक।
1: आइए गजल आपके सामने पेश करता हूँ। गजल
0: इरशाद
1: का मतलब पेशे खिदमत है।
0: जी।
1: अर्ज किया है कि क्या होता है सच्चा प्यार,
0: जी। होता
1: क्या
0: है सच्चा
1: होता है
0: प्यार।
1: सच्चा
0: सच्चा
1: क्या
0: प्यार।
1: होता है सच्चा प्यार, ये तुम क्या जानो।
0: क्या होता है सच्चा प्यार, ये तुम
1: क्या
0: क्या।
1: होता है सच्चा प्यार, ये तुम क्या
0: क्या
1: जानो,
0: जानो।
1: तुम हो मेरा कुल संसार, ये
0: वाह
1: तुम
0: वाह
1: क्या
0: वाह
1: जानो।
0: वाह वाह वाह
1: वाह।
0: वाह।
1: मजलूमी को हर्फे मुकद्दर कहने वालों,
0: मजलूमी
1: मजलूमी
0: को
1: को हर्फे मुकद्दर कहने
0: वालों।
1: वालों, लाजिम कब करनी यलगार, ये तुम क्या
0: आह
1: जानो।
0: क्या अच्छा है,
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह
0: अच्छा
1: वाह,
0: है। वाह
1: लाजिम
0: वाह
1: कब
0: वाह वाह
1: करनी
0: वाह वाह
1: यलगार,
0: वाह,
1: ये
0: क्या बात
1: तुम
0: है।
1: क्या
0: वाह वाह
1: जानो। जबरन जब भी कोई यहाँ करता है बुराई,
0: वाह। आह जबरन।
1: जबरन जब भी कोई यहाँ करता है बुराई,
0: बुराई।
1: करती क्या है फिर तलवार, ये तुम
0: वाह
1: क्या
0: वाह वाह
1: जानो।
0: वाह वाह
1: ये
0: वाह
1: है
0: वाह वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह।
0: वाह वाह।
1: शेर सुनिए के अजमल साहब।
0: जी इरशाद।
1: तुमने सिर्फ गुलाबों की है नरमी देखी,
0: जी तुमने
1: हाँ,
0: सिर्फ
1: तुमने सिर्फ गुलाबों की है नरमी
0: नरमी देखी।
1: देखी, क्या होते हैं तीखे खार, तुम क्या
0: क्या
1: जानो।
0: जानो।
1: वाह
0: क्या अच्छा।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह। वाह
1: क्या
0: जी वाह थिन
1: होते
0: साहब,
1: हैं
0: वाह जी वाह।
1: तीखे खार, तुम क्या जानो।
0: वाह
1: मक्ता पेशे खिदमत है
0: इरशाद।
1: कि फसले खिजा में सादिक किसकी आमद से है।
0: हाँ हाँ हाँ वाह वाह
1: फसले
0: वाह वाह।
1: खिजा
0: फिजा
1: फसले खिजा में
0: सादिक
1: सादिक
0: किसकी
1: किसकी
0: आमद
1: आमद से
0: से है।
1: है, पुर रौनक ये सब गुलजार,
0: हाँ
1: ये
0: वाह वाह
1: तुम
0: वाह।
1: क्या
0: बहुत
1: जानो।
0: अच्छा,
1: क्या
0: बहुत
1: बात,
0: अच्छा सादिक साहब,
1: पुर
0: क्या बात।
1: रौनक ये सब
0: वाह वाह
1: गुलजार,
0: वाह,
1: ये तुम क्या
0: क्या
1: जानो।
0: बात, सादिक
1: बहुत
0: साहब क्या
1: अच्छा।
0: अच्छा। वाह वाह वाह।
1: मतलब पेशे खिदमत है कि बावफा हद से ज्यादा कुछ वो दिलबर भी न था।
0: हद से ज्यादा। वाह वाह वाह।
1: बावफा हद से ज्यादा कुछ वो दिलबर भी न था, और कुछ पाना उसे अपना मुकद्दर भी न
0: मुकद्दर
1: था।
0: भी ना। जी
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है।
0: है, अच्छा।
1: बावफा हद से ज्यादा कुछ वो दिलबर भी न था,
0: जी
1: और कुछ पाना उसे अपना मुकद्दर
0: भी
1: भी न
0: ना था।
1: था। क्या गिला करता जुदा होने का मैं उससे भला,
0: जी क्या गिला।
1: क्या गिला करता जुदा होने का मैं उससे भला, हौसला तो हम रही का मेरे अंदर भी न
0: क्या
1: था।
0: बात। वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह। बहुत
1: जी
0: खूब
1: शुक्रिया।
0: बहुत खूब।
1: खिदमते मादर सरे महशर करेगी सुर्ख।

0: प्यास का मारा हिरन। और मतलब यह है कि सब्ज जंगल से निकलकर डार से बिछुड़ा हिरन आ गया सहरा की जद में, प्यास का मारा हिरन। और ये शेर गजल का मुलाहजा कीजिएगा खास तौर पर कि ले गए जिसको शिकारी
1: वाह
0: उसके बच्चों का सवाल,
2: ले गए जिसको शिकारी
0: उसके बच्चों का सवाल, क्या नहीं आएंगे मम्मी अब कभी
1: पापा हिरन। आए हाय हाय हाय क्या काफी इस्तेमाल हुआ है।
0: जिसको शिकारी
1: वाह वाह वाह वाह
0: उसके बच्चों का सवाल,
1: वाह वाह वाह
0: क्या नहीं आएंगे मम्मी अब कभी पापा हिरन।
1: वाह।
0: और ये शेर के अपनी बैठक में सजाने के लिए बाजार से,
1: अपनी बैठक में सजाने के लिए बाजार से,
0: अपनी बैठक में
1: वाह
0: सजाने के लिए बाजार से, आज हमने भी खरीदा फूस का पुतला हिरन। आज हमने भी खरीदा फूस का पुतला हिरन। और असल में ये शेर देखिए कि असल में होना ही था इतिहास में सीता हरण।
1: असल में होना ही था इतिहास में सीता हरण।
0: असल में होना ही था इतिहास में सीता हरण, इसलिए ही दे गया था राम को धोखा हिरण।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: असल में होना ही था तारीख में सीता हरण, इसलिए ही दे गया था राम को धोखा हिरण। और ए घटा तू भूल कर भी मत बरसना उस समय। तू भूल कर भी मत बरसना उस समय, ए घटा तू भूल कर भी मत बरसना उस समय, चर रहे हूँ शौक से जब धूप का चारा।
1: क्या बात है।
0: चर रहे हूँ शौक से जब धूप का चारा हिरन, और सोने जैसे सींग उसकी जान के दुश्मन बने।
1: वाह।
0: सोने जैसे सींग उसकी जान के दुश्मन बने, देखकर पांव जो अपने रोज रोता था हिरन।
1: अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है।
0: देखकर पांव जो अपने रोज रोता था हिरन, और शैदा कस्तूरी की खुशबू अंत ले लेती है जान।
1: वाह क्या बात।
0: शैदा
1: कस्तूरी
0: की खुशबू
1: अंत ले लेती है जान,
0: पागलों सा दौड़ता जब थक के गिर जाता हिरन।
1: वाह वाह वाह
3: क्या कहने जी।
0: पागलों सा दौड़ता जब थक के गिर जाता हिरन, सब्ज जंगल से निकलकर डार से बिछुड़ा हिरन।
1: वाह।
0: आ गया सहरा की जद में,
1: वाह
0: प्यास का मारा हिरन।
1: वाह वाह बहुत
0: बहुत शुक्रिया।
1: क्या कहने शहदा साहब, मैं चाहता ये हूँ कि आप एक गजल और पढ़ दीजिए तो
0: हजरात आपका हुक्म सर आंखों पर दांत से नवाजिएगा।
1: इरशाद
4: इरशाद
1: बेशक।
0: मतलब करता हूँ कि लहू के सुर्ख गुलाबों का कारोबार किया,
1: लहू के सुर्ख गुलाबों का कारोबार किया,
0: सुर्ख गुलाबों का कारोबार किया, बिखरते टूटते ख्वाबों का कारोबार किया।
1: अच्छा है, अच्छा है।
0: बिखरते टूटते
1: अच्छा अच्छा
0: ख्वाबों का कारोबार किया, और जमाने भर के सवालों के कर्जदार हुए।
1: अच्छा है, अच्छा है।
0: जमाने भर के सवालों के कर्जदार हुए, जमाने भर के जवाबों का कारोबार किया, जमाने भर के जवाबों का कारोबार किया। और ये गजल का शेर ये मुलाहजा फरमाएं कि ना लफ्ज जितेंद्र जी, ना लफ्ज कोई बना मेरे दिल का आईना। ना लफ्ज कोई बना
1: मेरे
0: दिल का आईना, तमाम उम्र किताबों का कारोबार किया।
1: अच्छा अच्छा।
0: तमाम उम्र किताबों का कारोबार किया, ना लफ्ज कोई बना मेरे दिल का आईना, तमाम उम्र किताबों का कारोबार किया। और रहे हैं वक्त के दरिया के दरमियान मगर।
1: अच्छा है, अच्छा अच्छा।
0: रहे हैं वक्त के दरिया के दरमियान मगर, लम्हों के खुश्क शराबों का कारोबार किया।
1: बहुत अच्छा है।
0: लम्हों के खुश्क शराबों का कारोबार किया, जुनून में जहर ही पीता था कहकहों का वो शख्स।
1: अच्छा है, अच्छा।
0: जुनून में जहर ही पीता था कहकहों का वो शख्स, अगरचे उसने शराबों का कारोबार किया।
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
0: अगरचे उसने शराबों का कारोबार किया, और जहां धड़ों पे न सर थे न शैदा चेहरे थे।
1: क्या बात है।
0: जहां धड़ों पे न सर थे न शैदा चेहरे थे, वहां भी हमने नकाबों का कारोबार किया।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: वहां भी हमने नकाब

बहुत शुक्रिया शादा साहब, बिल्कुल मुख्तलिफ रंग की शायरी और नए नए मफहूम, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका इस गजल के लिए। सामीन, आज इस मुशायरे में जो शायर शामिल थे उनमें जनाब अमृतपाल सिंह शहदा साहब थे, जनाब शहजादा अजमल शेरवानी साहब थे और जनाब मोहम्मद सादिक थिन साहब थे और मैं डॉक्टर जितेंद्र परवाज। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री

0: محمد بن عبد الرحمن بن جاسم السانی سے ملاقات کی. دونوں نیتاؤں نے دوپکشیہ سہیوگ کے وبھن پہلوؤں وشیش روپ سے ارجا ویاپار نویش سمپرک سرکشا اور جن سمبندھوں کی سمیکشا کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ودیش منتری نے کہا کہ انہوں نے رننیتک ساجیداری کو اور گہرا کرنے کے نئے اوسروں پر وچار ومرش کیا. ڈاکٹر جائشنکر نے بھارتی سمودائے کی سرکشا تتھا کلیان سنشچت کرنے کے لیے قطر کے پردھان منتری کو دھنیواد دیا اور پشچم ایشیا سنگھرش تتھا اس کے پربھاؤ پر ان کے آکلن کی ساجھا کرنے کی سراہنا کی. ڈاکٹر جائشنکر اس مہینے کی 13 تاریخ کو امریکہ کے نیو یارک شہر کی یاترا کریں گے جہاں وہ 2028-29 کے لیے سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کے کاریکال کے لیے بھارت کے آدھیکارک ابھیان کا شبھارمبھ کریں گے. انڈونیشیا گرودیو رویندر ناتھ ٹیگور کی وہاں کی ایتہاسک یاترا کی شتابدی منائے گا. اس کے لیے ورش 2026 اور 2027 کے دوران 15 مہینے کا کاریکرم آیوجت کیا جائے گا. انڈونیشیا میں بھارت کے راجدوت سندیپ چکرورتی نے آکاشوانی سماچار سے بات چیت میں کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی کی کل سے شروع ہونے والی انڈونیشیا یاترا کے دوران ان کاریکرموں کا شبھارمبھ کیا جائے گا. شتابدی سماروہوں میں پردرشنیاں اور پورے ورش چلنے والے سانسکرتک कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
1: विद प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे. इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है. हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा. इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया.
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है. आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है. समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा. भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है. ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया. 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा. ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ. ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है. वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है. ये आकाशवाणी है. सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे. मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा. श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है. केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की. उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया.
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई. 100 दिन नहीं, अब 125 दिन

0: कारगर। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्तानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है कालीचरण, गीत इंद्रजीत सिंह तुलसिया का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आरडी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अदालत फिल्म का गाना। गीत गुलशन वावरा ने लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर, इलारुन और साथियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिवहरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, ने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

0: right, right, right. All right.
1: How old dear homestead day.

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराए, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

फिल्म पुकार के बाद साल 2001 में वो लेकर आए महिलाओं से जुड़े विषय पर एक बड़ी ही प्रखर फिल्म लज्जा।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष भूमिका में थी।

लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: के किरदार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: अच्छा यह गीत आप सुनेंगे।
1: असी आकाशवाणी के पटियाला केंद्र तो बोल रहे हाँ। समा मिला लो इस समय रात के ठीक 10 बज चुके हैं। तो हुण एक नज़र इस वेले दीआं मुख सुरखियां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया आस्ट्रेलिया अते न्यूजीलैंड दे 6 दिनां दौरे लई रवाना होणगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अज दोहा विच कतर दे प्रधानमंत्री विदेश मंत्री मुहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जैसमिन अल थानी नाल मुलाकात की। दोवां नेतावां ने दुवल्ले सहयोग दे वख-वख पहलुआं दी समीक्षा की।

0: फील्डर के पास,
1: किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुईं।

0: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall tomorrow has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather this afternoon, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said, a new chapter is being written in Shivpuri's history today. Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly and some of the world's most